मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 अगस्त सन 2026। सुबह के 5:55 हुए हैं, आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

लहलहाते हरे भरे खेत खलिहान, रंग बिरंगे फूलों से लदे पेड़ों की डालियां, चुलबुल करते पंछियों का फुदकना और हवाओं का इतराकर मचल जाना, बारिश की बूंदों से धुलकर प्रकृति की खूबसूरती एक अलग ही चमक बिखेर रही है, तो सूरज की किरणें भी बादलों संग इठला रही हैं। सावन के मौसम की यही तो अनोखी अदाकारी है, जिसमें भीगकर प्रकृति की हर जटा खुश होकर मुस्कुरा रही है, गा रही है। और इस हरियाली भरे सफर में नमस्ते लखनऊ का ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर एक और अंक लेकर आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति।

सुप्रभात। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6 बजने को है दिन की शुरुआत। देश दुनिया की खबरों के साथ हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की
2: जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। होर्मुज डलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमरीका के बीच जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मुंबई के सोम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चीन के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड

0: खंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। सुबह के 6:05 हुए हैं। नमस्ते लखनऊ के आज के अंक में सबसे पहली सौगात किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषि चर्चा के साथ। आज के कार्यक्रम में भेंट वार्ता का विषय है फलदार पौधों की उन्नत बागवानी और इस विषय पर डॉक्टर लल्लन प्रसाद यादव से भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां आप फलदार वृक्षों की बागवानी कर रहे हैं वहां इस समय सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर एलपी यादव साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि फलदार वृक्षों में इस समय सामयिक प्रबंधन में क्या कुछ करें बागवान भाई बहन।
3: सभी किसान एवं बागवान भाइयों को नमस्कार। इस समय सभी जो बागवान जो नया पौधरोपण करना चाहते हैं, वृक्षारोपण करना चाहते हैं, उसमें प्रमुख रूप से आम, अमरूद, नींबू, केला कुछ देर हो गया है, इनका वृक्षारोपण कर सकते हैं। इनके जो प्रमुख किस्म हैं, जो बहुत उन्नत किस्में हैं, उनमें हम थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं कि आम के अगर आप वृक्षारोपण करना चाहते हैं तो ऐसी किस्मों का चयन कीजिए जिनका मार्केट में अच्छा मांग है, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, रतौल, गौरजीत, आम्रपाली, मल्लिका, पूसा अरुणिमा, पूसा सूर्या, अंबिका, अरुणिका किस्में हैं जिनका की फल की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है और उनकी बाजार में अच्छी कीमत प्राप्त हो सकती है।
2: और अमरूद में?
3: अमरूद में इलाहाबाद सुरखा, इलाहाबाद सफेदा, सरदार, ललित, श्वेता, पंत प्रभात, ये किस्में उत्तर प्रदेश के जलवायु में, यहाँ की मिट्टी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, तीन का हम चयन कर सकते हैं अमरूद के केस में।
2: और नींबू वर्गी बागवानी में?
3: नींबू वर्गी में पंत लेमन, कागजी कला, प्रमालिनी, विक्रम, साई सरबती किस्में परफॉर्मेंस दे रही हैं।
2: और जहां पपीते की बागवानी करना चाहते हैं किसान भाई बहन, वहां
3: किसान भाइयों के लिए इस समय सबसे बहुत एक प्रकार का इनको वरदान मिल गया है कि पहले जो समस्या थी पपीता के साथ कि हर पेड़ से फल नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसी किस्में हैं जिससे हर पेड़ से फल मिल सकता है। उसमें विशेष रूप से पूसा डेलिशियस, पूसा मजेस्टी, पूसा नन्हा, सूर्या, रेड लेडी ऐसी किस्में हैं जिनसे हर पेड़ से फल प्राप्त हो सकता है। तो हमारी सलाह यह है कि ऐसी किस्मों पे जोर दें।
2: डॉक्टर साहब, जहाँ नए पौधरोपण करने हैं उसके लिए सबसे उपयुक्त समय है बागवान भाई उन्नत प्रजातियों का अच्छा पौधा लेकर के रोपित करें और उसकी देखभाल करते रहें। जहाँ पुराने फलदार वृक्ष हैं, जैसे आम के जहाँ फलदार वृक्ष हैं, उनमें इस समय सामयिक प्रबंधन में क्या करना है?
3: इस समय आम के बाग या किसी भी प्रकार की बाग है वहाँ पर खरपतवार बहुत तेजी से बढ़ता है, तो खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए मानसून के मौसम में महीने में कम से कम एक बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। साथ ही पौधे के चारों ओर नमी बनाए रखने के लिए बेसिन बनाया जाना जरूरी है। इसके अलावा यदि आम का वृक्ष विशेष रूप से इसमें जुताई नहीं कर सकते पूरे, तो कम से कम तीन जुताई, एक मानसून से पहले, एक मानसून के बाद में, फिर नवंबर के महीने में एक जुताई कर देने से काफी कुछ खरपतवार नष्ट हो जाते हैं।
2: और फलदार वृक्षों में जल निकासी भी जरूरी है?
3: जी, जल निकासी जो है फलों की गुणवत्ता पर काफ़ी प्रभाव डालती है, साथ ही साथ उपज भी अधिक होती है। अगर जल निकास की व्यवस्था है तो किसी भी प्रकार के और विकार नहीं पैदा हो सकते।
2: क्या इस समय मल्चिंग भी फायदेमंद होगा?
3: जी, मल्चिंग में आप जहां पानी की कमी है नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग जरूरी है, साथ ही साथ पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। और मल्चिंग से कई फायदे हैं जिससे कि खरपतवार बिल्कुल नियंत्रित हो जाता है मल्चिंग से भी, तो इसलिए मल्चिंग अगर काली पॉलीथीन सीट से करें तो ज़्यादा अच्छा है।
2: डॉक्टर साहब, जो भी फलदार वृक्ष हैं उनके बीच में जो बची जगह है उनका भी तो सदुपयोग कर सकते हैं?
3: जी, कोशिश ये करना चाहिए कि जो सिम्बी।

0: फसलें हैं, दाल वाली फसलें हैं, अंतः फसल के रूप में उगाएं। सब्जियों में आप टमाटर, भाटा, मरचा भी उगा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे फलदार वृक्षों में सामयिक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 82 99 71 48 17, 8299714817, 82 99 71 48 17।
1: डॉक्टर LP यादव साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और फलदार वृक्षों में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें बागवान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: फलदार पौधों की उन्नत बागवानी, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। डॉक्टर ललन प्रसाद यादव से भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय, कृषि चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत। नमस्ते लखनऊ के सफर में आइए अब जानते हैं आज का सुविचार। विषय है प्रेम। स्वर डॉक्टर शिवा राकेश की।
3: जिसमें ऊंचा आदर्श और शुद्धता हो वही सच्चे प्रेम के योग्य होता है। भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, सभी संबंधों में यदि प्रेम सत्य है तो वो एक दूसरे को ऊंचा उठाने वाला, आत्मा को उन्नत करने वाला होना चाहिए। सच्चा प्रेम तभी होता है जब वो त्याग और अनुशासन से भरा हो। यदि वो वासना, स्वार्थ या मोह से जुड़ गया तो उसका स्वरूप बदल जाता है। मोह, लालसा और आसक्ति से प्रेरित प्रेम बंधन होता है, जिससे न तो आत्मिक उन्नति होती है न ही वास्तविक सुख की अनुभूति। प्रेम का उद्देश्य आत्मविकास और दूसरों की आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना है। इसके लिए संयम, विवेक और पवित्रता नितांत आवश्यक है। सच्चे प्रेम में न तो अधिकार का भाव होता है और न ही स्वामित्व का, उसमें होता है केवल देने का भाव, निस्वार्थ सेवा और त्याग। यदि कोई व्यक्ति प्रेम में डूबा है तो उसमें एक पवित्र आकर्षण होता है जो प्रेरणा देता है, बंधन नहीं बनाता। लेकिन यदि वही आकर्षण शारीरिकता या भावनात्मक निर्भरता में बदल जाए तो वो पतन का कारण बनता है। इसीलिए प्रेम का प्रयोग केवल उच्च स्तरीय होना चाहिए, जहां आत्मा की पुकार, सेवा का भाव और आदर्शों की रक्षा होती है। नारी पुरुष, माता पिता और संतान, गुरु शिष्य, देश और समाज के लिए प्रेम उसी समय सार्थक होता है जब वो लोक मंगल से जुड़ा हो। छोटे स्वार्थों, वासनाओं और लालसाओं से परे उठकर जब प्रेम का स्वरूप निर्मल, आदर्श और त्यागमय हो तब वो यथार्थ में प्रेम कहलाने के योग्य बनता है। ऐसा प्रेम न केवल दो आत्माओं को जोड़ता है बल्कि समूचे समाज को दिशा देने में सक्षम होता है। सच्चे सहृदय और सज्जन लोग दूसरों के साथ निष्ठा, समर्पण और स्नेह भाव से जुड़ते हैं। इस जुड़ाव में अपने स्वार्थ या लाभ की कोई भावना नहीं होती। ये एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों के दुख को भी अपना ही दुख मानकर उनकी सहायता करता है। ये संबंध आत्मीयता, संवेदनशीलता और करुणा पर आधारित होता है। जैसे साहित्य, संगीत, नाटक, चित्र आदि के माध्यम से भावनाएं व्यक्त होती हैं, वैसे ही सामाजिक जीवन में भी ये भावुकता लोगों के बीच सत्य संबंध बनाने में सहायक होती हैं। जब लोग एक दूसरे के सुख दुख में साझेदारी करते हैं तो समाज में आत्मीयता और सौहार्द का वातावरण बनता है। अक्सर देश और समाज में ये भावना कमजोर हो जाती है। लोग अपने स्वार्थ, आराम और सुविधाओं में डूबे रहते हैं। लेकिन यदि हर व्यक्ति ये संकल्प ले कि वे दूसरों की सहायता करेगा तो ये दुनिया एक बहुत बेहतर स्थान बन सकती है। दूसरों के दुख को महसूस करना, उनकी सहायता करना और उन्हें सहारा देना सच्ची मानवता ही नहीं वरन दैवीय स्थान तक पहुंचने का रास्ता है। मानवता का ये गुण व्यक्ति को न केवल सामाजिक रूप से मूल्यवान बनाता है बल्कि आत्मिक संतोष भी देता है। इसके विपरीत जो लोग केवल अपनी सुविधा और सुख के बारे में सोचते हैं वे अंततः अकेले और असंतुष्ट रह जाते हैं। जब व्यक्ति अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा उठाता है तो वो दूसरे के कष्टों को समझने और हल करने की क्षमता पाता है। ये केवल दान या सेवा की बात नहीं बल्कि एक संवेदनशील जीवन दृष्टि की आवश्यकता है। यही सच्चा धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग है जो हमें अपने भीतर की मानवता से जोड़ता है। गिरते और थकते व्यक्ति को ऊर्जा देने के लिए प्रबल शक्ति की जरूरत होती है। प्रेम का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वे मनुष्य को थकान, निराशा और असफलता के अंधकार से निकाल सकता है। ये एक सशक्त प्रेरणा है जो मनुष्य को चलाने और ऊंचाई तक ले जाने वाली सर्वोत्तम शक्ति है। मन को जीतने और प्रसन्न रखने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। किसी को रास्ते पर लाना हो, सच्चाई के पथ पर चलाना हो तो प्रेम पूर्ण व्यवहार से किया जाए। शुष्क नैतिक प्रवचन की अपेक्षा प्रेम भरा व्यवहार अधिक प्रभावशाली होता है, इसीलिए जीवन में प्रेम भावना का विस्तार करना नितांत आवश्यक है। प्रेम करना कोई कमजोरी नहीं, ये उच्चतम शक्ति है। सच्चा प्रेम साहस, संयम, सहानुभूति, त्याग, सहिष्णुता और उदारता जैसे श्रेष्ठ गुणों से भरा होता है। हमारा प्रेम सीमित, स्वार्थ से प्रेरित और परिस्थितियों पर आधारित नहीं होना चाहिए। प्रेम को सच्चे अर्थों

0: जीवन में उतारने के लिए आवश्यक है कि हम ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अपमान, क्रोध, मोह और संकीर्णताओं से ऊपर उठें। हमें लोगों की कमजोरियों को क्षमा करना सीखना चाहिए। यही सच्चा प्रेम है। जब व्यक्ति समाज, देश और समस्त मानवता के कल्याण के लिए कार्य करता है तो उसका प्रेम व्यापक हो जाता है। उसे किसी एक व्यक्ति, जाति या समुदाय तक अपने प्रेम को सीमित नहीं रखना चाहिए। ये तो वो सच्चा दीपक है जो बिना तेल के भी जलता है, क्योंकि उसमें आत्मा का प्रकाश होता है।
1: प्रेम, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुविचार। ये है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:15 हुए हैं। नमस्ते लखनऊ में समय हो चला है ईश्वर के उस परम शक्ति को नमन का। कार्यक्रम है आराधना।

शिव की शक्ति, शिव की भक्ति सावन के इस पावन में वातावरण में चारों ओर गूंज रहा है ओम नमः शिवाय का जयकारा। आइए हम भी भोलेनाथ के लिए अपनी श्रद्धा अर्पण करें। आराधना कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं शिव भक्ति के इस गीत के साथ।

महादेव के दरबार में दुनिया बदल जाती है। आशीर्वाद के हाथ से इंसान के हाथों की लकीर बदल जाती है। लोग जो भी दिल से भोलेनाथ का नाम लेते हैं, पल में उनकी तकदीर बदल जाती है।

जिसके मन में ईश्वर का वास है, भाग्य में उनके बैकुंठ धाम है। शिव हो, कृष्ण हो या फिर श्री राम, भगवान के नाम जप में ही जीवन का सार है। उस परमात्मा के चरण

जब गमों ने तुमको घेरा हो, तुम हाल श्याम को सुना देना। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़े, तुम अपने श्याम को मना लेना। मेरे श्याम तो करुणा के सागर हैं, तुम डुबकी उसमें लगा लेना।

शिवार्ती के साथ ही संपन्न होती है आज की आराधना। मीडियम वेव के मीटर पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। नमस्ते लखनऊ में ईश्वर भक्ति के मार्ग पर एक और प्रस्तुति, आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

अरण्य में सीता की खोज में भटकते श्रीराम और लक्ष्मण की गिद्धराज जटायु से भेंट होती है। मरते समय जिनके नाम के उच्चारण मात्र से अधम को भी सदगति प्राप्त हो जाती है, उन्हीं प्रभु के दर्शन और हाथों का स्पर्श प्राप्त कर जटायु का जीवन धन्य हो गया। महाप्रयाण के लिए तत्पर गिद्धराज से श्रीराम अपने उद्गार प्रकट करते हैं। हे तात, आपको मैं क्या दे सकता हूं, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं। आप परमधाम जाइए, किंतु वहां पिताजी से सीता हरण का दुखद समाचार न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो रावण अपने पूरे कुटुंब सहित स्वयं जाकर उन्हें सारी कथा सुना देगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, स्वर जगजीत सिंह और सुरेश वाडेकर की थी। मीडियम वेव 401.61 मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को हैं, सुनिए संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। सुबह के 7 बजे हैं नमस्ते लखनऊ में बातें सेहत की। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय सेहत के लिए मूली। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सब्जी की जो हर मौसम में हर गली हर सब्जी मंडी और हर थाली में दिखाई देती है। कुछ लोग इसे देखकर खुश हो जाते हैं तो कुछ नाक भौं चढ़ाते हैं, लेकिन एक बात तय है, ये सब्जी हर घर की जानी पहचानी है। जी हाँ, आज चर्चा है हमारी पुरानी परिचित मूली पर। मूली एक ऐसी सब्जी है जिसे जितना खांटी देसी माना जाता है उतना ही ये आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी उपयोगी है। भारत में ये न केवल एक सब्जी है बल्कि कई परिवारों की यादों स्वादों और परंपराओं से जुड़ी हुई है। मूली के पराठे की खुशबू से लेकर मूली के पत्तों की सब्जी तक इसका स्वाद हमारी थाली से लेकर दिल तक पहुँचता है। चलिए शुरुआत करते हैं मूली की प्रकृति से। मूली एक ठंडी तासीर वाली जड़ वाली सब्जी है। इसका स्वाद हल्का तीखा कभी कभी मिठास लिए होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मूली में बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है, साथ ही फाइबर विटामिन सी फोलेट पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा गुण है शरीर को साफ करना। ये प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करने वाली सब्जी मानी जाती है जो हमारे पाचन तंत्र को सक्रिय करती है और लीवर किडनी को भी सहयोग देती है। शरीर में अगर बार बार भारीपन लगे, गैस बने, कब्ज की समस्या हो या भूख खुलकर ना लगे तो मूली को भोजन में शामिल करना बहुत लाभकारी हो सकता है। ये आंतों की सफाई करती है और मल त्याग को सुचारू बनाती है। आयुर्वेद में इसे शोधनकारी यानी शुद्धि करने वाला बताया गया है। अब बात करें मूली के पत्तों की तो ये अक्सर अनदेखा हिस्सा होता है, पर सबसे गुणकारी भाग भी मूली के पत्ते कैल्शियम आयरन और क्लोरोफिल से भरपूर होते हैं। ये हड्डियों को मजबूत करते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं और खून को साफ करने का काम करते हैं। अगर आप एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रहे हैं तो मूली के पत्तों की सादी भुजिया पराठा या फिर सूप आपकी थाली में जरूर होना चाहिए। श्रोताओं आजकल एक आम समस्या है थकावट, चिड़चिड़ापन और पाचन संबंधी गड़बड़ियाँ। कई बार ये संकेत होते हैं कि हमारे शरीर को अंदर से सफाई चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो सिस्टम को रीसेट कर दे। मूली ऐसे समय में बिल्कुल वैसा ही काम करती है। मूली का एक और बड़ा लाभ है ये शरीर में जमा हुए अतिरिक्त पित्त और गर्मी को शांत करती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका भोजन मसालेदार और तैलीय होता है। मूली का नियमित सेवन शरीर में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही मूली में ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो शरीर में इंसुलिन के प्रभाव को बेहतर करते हैं, जिससे ये डायबिटीज के रोगियों के लिए उपयोगी मानी जाती है। कई लोग मूली से परहेज करते हैं ये कहकर कि ये गैस बनाती है या गंध देती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर मूली को पकाकर अदरक हींग जीरा जैसे मसालों के साथ खाया जाए तो ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि लाभ ही देती है। श्रोताओं दूसरी ओर जिन लोगों को थायराइड या पेट में अल्सर की समस्या है उन्हें मूली सीमित मात्रा में और पकी हुई अवस्था में लेनी चाहिए। अब चलिए जरा मूली की सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका को भी समझें। ग्रामीण क्षेत्रों में जब खेतों से ताजी मूली निकाली जाती है तो उसका स्वाद ही कुछ और होता है। खेत से खींची गई, धोकर सीधा नमक नींबू के साथ खाना जैसे आत्मा तक ताजगी पहुंच जाए। मूली का अचार, मूली की चटनी और वो लजीज मूली का पराठा, सब में एक देसीपन है, एक अपनापन है जो बड़े शहरों की चमकदार सब्जियों में शायद ही मिलता हो। मूली एक ऐसी सब्जी है जो गर्मी नहीं करती, इसलिए सर्दियों में इसका सेवन विशेष रूप से लाभदायक है। ये रक्तचाप को संतुलित करने में सहायक होती है और हृदय को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जो लोग वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए मूली बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें कैलोरी कम होती है, पेट जल्दी भरता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगती। एक और रोचक बात, मूली त्वचा के लिए भी लाभकारी मानी जाती है। इसके रस को त्वचा पर लगाने से मुहासे दाग धब्बों में आराम मिलता है। बालों के लिए भी मूली का रस

0: उपयोगी हो सकता है, विशेषकर डैंड्रफ की समस्या में। अब सोचिए, एक साधारण सी दिखने वाली सब्जी जो इतनी सारी समस्याओं का समाधान हो सकती है, क्या वो हमारे भोजन का हिस्सा नहीं बननी चाहिए? तो श्रोताओं, अगली बार जब आप सब्जी मंडी जाएं और मूली की टोकरी दिखे तो थोड़ी देर रुकिए, उसे केवल एक सस्ती आम सब्जी की नजर से मत देखिए, उसमें छुपा है मिट्टी का पोषण, दादी माँ का अनुभव और स्वास्थ्य का सच्चा मंत्र। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आप अगली बार मूली खाते हुए सिर्फ स्वाद ही नहीं सेहत का भी आनंद लेंगे। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: सेहत के लिए मूली, इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर, कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले दिल्ली से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश आप सुन सकेंगे रात्रि 10 बजे से। इसके साथ ही दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा प्रसारित की जाएगी रात्रि 8 बजे से। आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रमों की श्रृंखला में स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 7:31 पर, जिसमें आज सुनेंगे भेंटवार्ता, गैर संचारी रोग, लक्षण व निदान। इस विषय पर डॉक्टर आनंद त्रिपाठी से भेंट करता होंगे देवाशीष। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8:15 पर आज सुनेंगे वंदना शुक्ला के स्वर में भजन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 7:31 पर। आज कार्यक्रम में सुनेंगे ऋतु भार्गव के स्वर में ख्याल गायन। लोकगीत के कार्यक्रम में आज की लोकगीत कलाकार होंगी ममता श्रीवास्तव, इनके स्वर में अवधि लोकगीत आप सुन सकेंगे सुबह 9:50 पर लोक रंग कार्यक्रम में, और दोपहर 2:45 पर लोक माधुरी कार्यक्रम में। जिले की हलचल कार्यक्रम का प्रसारण होगा सुबह 9:15 पर। आज कार्यक्रम में सुनेंगे अलीगढ़ और भदोही जिलों की हलचल के बारे में। उर्दू कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुबह 9:30 पर होगी आकाशवाणी प्रयागराज की पेशकश शेरी नशिस्त। महिलाओं के अपने कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण समय होगा दोपहर 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे ज्योति चंद्रा की कहानी नव की मैडम, साथ ही होगी चर्चा और सुनेंगे लोकगीत। दोपहर 2:30 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम विज्ञान और किसान, जिसके अंतर्गत होगी भेंटवार्ता, धान की फसल में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। इस विषय पर सुरेश पाल सिंह से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायंकालीन सभा की शुरुआत में सुनेंगे इन्फोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 पर। आज इस कार्यक्रम में आज की बात सुनेंगे भेंटवार्ता, खेल पत्रकारिता और युवाओं का भविष्य। इस विषय पर शरद दीप से भेंट करता हूंगी अनुष्ठा मिश्रा। नई उड़ान, इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 5:45 पर, जिसमें संकल्प वाणी @2047 के अंतर्गत सुनेंगे अभिषेक के साथ ओवी। संवाद की शक्ति, संविधान, नागरिक सहभागिता एवं जनभागीदारी विषय पर। साथ ही मुद्दा लाइक का विषय होगा खुदराम बोस बलिदान दिवस, संविधान क्विज एवं युवा जागरूकता, और जानेंगे विभिन्न गतिविधियों के बारे में समय के साथ। शाम 6:30 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम लोकायतन, जिसमें सुनेंगे भेंटवार्ता, गुर्दे की पथरी कारण और निवारण। इस विषय पर हकीम अरशद अली से भेंट करता होंगे रामजीत मौर्य। साथ ही होगी चर्चा जल जीवन मिशन विषय पर और सुनेंगे लोकगीत। किसान भाइयों के लिए अपने विशेष कार्यक्रम खेती किसानी का प्रसारण समय होगा शाम 6:50 पर, जिसमें होगी भेंटवार्ता, बरसात में पशुओं की बीमारियां और उनसे बचाव। इस विषय पर भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसके साथ ही कार्यक्रम में होगी चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना विषय पर, सुनेंगे लोकगीत और जानेंगे जानकारी की बातें। इन सभी कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी लखनऊ से फिल्म संगीत के फरमाइशी कार्यक्रम भी श्रोताओं आपके लिए प्रसारित किए जाएंगे। कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत लेकर आएंगे सुबह 8:45 पर। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें फोन इन प्रोग्राम का समय होगा दिन में 11 बजे से। जवानों के लिए कार्यक्रम होगा दोपहर 1:50 पर, और आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर आएंगे रात्रि 9:30 पर। तो श्रोताओं, ये थी एक जानकारी आज आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। मीडियम वेव के मीटर पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ, और ये है नमस्ते लखनऊ का ज्ञान और

विविधा कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट गूगल और डिजिटल टेक्नोलॉजी आज कहीं भी किसी से भी अछूता नहीं। क्या देश क्या विदेश, आज गांव और दूरदराज के क्षेत्रों में भी हम इन माध्यमों के जरिए पहुंच सकते हैं, जहां एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम है ई मार्केटिंग का। जी हाँ, ई मार्केटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग, जो इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके अपने उत्पादों या सेवाओं का प्रचार करने और उन्हें बेचने की एक प्रभावित प्रक्रिया है, और जिसके जरिए कंपनियां दुनिया भर के ग्राहकों तक आसानी तक पहुंच सकती हैं। ई मार्केटिंग वो प्रभावपूर्ण तकनीक है जिसने हमारे देश के दूरदराज के क्षेत्रों में बसी लोक और जनजातीय कला और आदिवासी कलाकारों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय लोक कला एवं जनजातीय कलाएं और साहित्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अहम हिस्सा है, जो देश की अमूल्य संस्कृति को दर्शाता है। ये जनजातीय कलाएं और साहित्य भारतीय समाज के विविध पहलुओं को अभिव्यक्त करती हैं और आम जनजीवन परंपराओं, मान्यताओं और प्रकृति से उनके गहरे जुड़ाव को बिना किसी कठिन नियम या औपचारिकता के सहज रूप से दर्शाती हैं, जिसमें किसी खास क्षेत्र या समाज के लोगों की सोच और जीवन शैली की झलक मिलती है। मुख्य रूप से भारतीय लोक एवं जनजातीय कला समृद्धि, सामाजिक समरसता और आदि सांस्कृतिक अभिवृद्धि का आदान प्रदान करती है। इसके साथ ही साथ ये लोक और जनजातीय कला पर्यावरण संरक्षण का बहुत ही अहम स्रोत है। वनों, जल स्रोतों और जैव विविधता के प्रति पूजनीय और टिकाऊ दृष्टिकोण अपनाती है और समता का भाव प्रदर्शित करती है। बढ़ते डिजिटल से टेक्नोलॉजी से जहां लोगों की जीवन शैली बदली है, देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से इन जातियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास जारी है। साथ ही जनजाति एवं लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रदर्शन के लिए जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की स्थापना भी की गई है, जिसके द्वारा लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं को मंच प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही भारत सरकार का ट्राइबेट्स, जिसे आदि संस्कृति के नाम से जाना जाता था, और ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस जैसे प्लेटफॉर्म आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो समाज में आर्थिक परिस्थिति की सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, डिजिटल माध्यमों से जहां दुनिया बहुत सीमित हो गई है, ऐसे में ई मार्केटिंग इन लोक और जनजातीय कलाओं का प्रचार प्रसार करने में एक अहम भूमिका निभा रही है। ऑनलाइन बाजार के द्वारा सरकारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनजातीय हस्तकला और हस्तशिल्प बिना मध्यस्थता के उचित दामों पर बिक रहे हैं, जिससे जनजातीय और आदिवासी कलाकारों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, जिससे कलाकारों को उनकी कला का पूरा मुनाफा मिलता है और हमारे देश की प्राचीन कला का संरक्षण भी होता है।

दोस्तों, ई मार्केटिंग के जरिए देखा जाए तो स्थानीय कला देश और दुनिया के कला प्रेमियों तक आसानी से पहुंच तो रही है। बावजूद इसके आज भी कई आदिवासी क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीकी ज्ञान का अभाव है। दूर दराज के इलाकों से उत्पादों की सुरक्षित और समय पर डिलीवरी का एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को मिलकर पूरा कर सकते हैं आप और हम इस ई मार्केटिंग और जनजातीय कला के बीच माध्यम बनकर, दुनिया को इन कलाओं के बारे में जानकारी देकर, इनकी कला का प्रदर्शन करके और इन कलाओं की सुंदरता और सादगी को मॉडर्न सोशल मीडिया कैनवस पर चित्रित करके। इस अनुरोध के साथ कि आइए अपनी स्थानीय विरासत को हम मिलकर संजोएं, उसे समय के साथ बेहतर बनाएं और अपने देश की सांस्कृतिक खूबसूरती से दुनिया को अवगत कराएं और देश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाएं। विविधता कार्यक्रम में अब दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा को। आपका दिन शुभ हो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। ये है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 7:20 होने को हैं। सुनिए प्रादेशिक समाचार गोरखपुर केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ। काकोरी ट्रेन एक्शन के 101 वर्ष पूरे होने पर शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कल गोरखपुर में 69 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार सड़क परियोजना का करेंगे लोकार्पण। और सावन के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में तड़के से उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं श्रद्धालु और कांवड़िए। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। इस क्रम में जनप्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं, भाजपा नेताओं और कलाकारों सहित राज्य के विभिन्न स्थानों से आए लोगों के साथ मुख्यमंत्री आवास से विधान भवन तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तिरंगा लेकर पैदल चले। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि तिरंगा विकास और विरासत का प्रतीक है।
2: हमारा ये तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी ट्रेन एक्शन के 101वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में काकोरी शहीद स्मारक पर आयोजित शताब्दी समारोह में भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्र नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आह्वान किया कि हम सभी अपने गांव, क्षेत्र और जनपद में अनेक गुमनाम नायकों से जुड़ी बिखरी सामग्री को एकत्र करें। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर महानगर में निकलने वाली तिरंगा यात्रा की अगुवाई करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था

0: बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सिद्धार्थनगर जिले में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल सहित जिले के कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों के कारण सिद्धार्थनगर जनपद लगातार प्रगति की राह पर अग्रसर है।
1: सिद्धार्थनगर जनपद जो आकांक्षी था, पिछले 8-9 वर्षों के अंदर जो प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, देश के अंदर 112 जनपद आकांक्षी जनपद हैं और अग्रणी छलांग लगाने वाला कोई जनपद है वो सिद्धार्थनगर जनपद है। अब ये आकांक्षात्मक नहीं, विकास के पायदान पर तेजी के साथ अग्रणी भूमिका के लिए जाने जाना वाला जनपद है।
0: मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में 69 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार सड़क परियोजना का लोकार्पण करेंगे। सावन के दूसरे सोमवार पर प्रदेश भर के शिव मंदिरों में आज तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: सावन के दूसरे सोमवार पर पवित्र नदियों से जल भरकर प्रमुख शिवालयों में जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़ियों के लिए प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कई जगहों पर रूट डायवर्जन किया है और नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में भगवान विश्वेश्वर की मंगला आरती की गई। भगवान राम की नगरी अयोध्या में नागेश्वरनाथ मंदिर, बाराबंकी के लोधेश्वरनाथ मंदिर, कानपुर के नागेश्वर बाबा मंदिर और सीतापुर के श्यामनाथ मंदिर में बोल बम के जयकारों के बीच शिव भक्त श्रद्धा और भक्ति के माहौल में जलाभिषेक कर रहे हैं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया है कि काशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है।
3: तमाम हमारे कांवड़िया श्रद्धालु केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, विभिन्न अन्य प्रदेशों से भी लोग यहां पर आ रहे हैं। जो हमारा संगम रूट है प्रयागराज से लेकर के यहां का रूट है, उस पर लगातार लोगों का आवागमन बना हुआ है। सभी श्रद्धालु यहां पर सुरक्षित तरीके से यहां पर आए, इसके लिए एक डेडिकेटेड लेन बनाई गई है, विश्राम गृह बनाए गए हैं, पुलिस चौकियाँ स्थापित की गई हैं, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है।
0: कांवड़ यात्रा के चलते संभल में आज सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। बस्ती, चित्रकूट, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, वाराणसी, प्रयागराज, संभल, हापुड़ और बाराबंकी में कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में आज कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ। काकोरी ट्रेन एक्शन के 101 वर्ष पूरे होने पर शहीदों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर में 311 करोड़ रुपए की 107 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कल गोरखपुर में 69 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार सड़क परियोजना का करेंगे लोकार्पण। और सावन के दूसरे सोमवार पर शिव मंदिरों में तड़के से उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भगवान शिव का जलाभिषेक कर

0: पूजा अर्चना कर रहे हैं श्रद्धालु और कांवड़िए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

आकाशवाणी लखनऊ से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम में प्रस्तुत है ख्याल गायन, कलाकार हैं ऋतु भार्गव, राग है नट भैरव। विलंबित और द्रुत रचना एक ताल में निबद्ध है, आइए सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे ऋतु भार्गव के स्वर में राग नट भैरव पर ख्याल गायन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है, और समाप्त होता है यहीं पर नमस्ते लखनऊ का आज का अंक। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। सुबह के 8 बजने को है, सुनिए हिंदी समाचार पत्रिका समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देशभर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: तिरंगा, हर घर तिरंगा।
0: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
3: कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। तिरंगे की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख

0: को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेलमार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाश ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले 2 दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी

0: प्रभावित हुए हैं। आईएमडी ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
2: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, जेपीएससी के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। संसद के मॉनसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे 4 विधेयक, मेट्रा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक डीजीसीए ने उड़ान चालक दल के दोनों सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 8:15 हुए हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्ते बरेली।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम नमस्ते बरेली में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है सावन का दूसरा सोमवार, और शिव भक्ति का जो ये महीना चल रहा है, सावन मास चल रहा है, शिव भक्ति के लिए तो ये पूरा अपने आप में बहुत महत्व रखता है, लेकिन खास तौर से जो सावन मास के जो सोमवार होते हैं वो अपने आप में बहुत विशेष हैं, और आप लोग

सड़कों पर चल रहे हैं तो भी आपको कांवड़ ये दिख रहे होंगे कि कितनी लोगों में श्रद्धा और भक्ति है, और लोग जल लेकर आ रहे हैं, गंगा जल लेके आ रहे हैं और मंदिरों में चढ़ा रहे हैं। तपेश्वरनाथ मंदिर में आज होकर रुद्राभिषेक और साथ ही होगी शोभा यात्रा। गंगा जल लेकर मंजिल की ओर बढ़ता कांवड़ियों का जत्था कछला से जल लेकर रविवार को बाबा बनखंडीनाथ मंदिर में पहुंचा। शिव भक्तों का जत्था लगातार लोग जल रहा रहे हैं और आज शाम तक देर रात तक जल चढ़ता ही रहेगा। गंगा जल लेकर मंदिर में पहुंचे कांवड़िए, तड़के चढ़ाया जल। बनखंडीनाथ से पहले दोपेश्वरनाथ व अलखनाथ में लगाई हाजिरी, हजारों की संख्या में कांवड़िए बदायूं कछला घाट के लिए हुए रवाना। रामगंगा तट पर शिविर लगाकर हो रही कांवड़ियों की सेवा। कांवड़ियों की सेवा का भी एक अपना विशेष महत्व है कि अगर जो लोग शिव भक्ति कर रहे हैं या गंगा जल लेने जा रहे हैं तो उनकी सेवा करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ये कि आप अगर नहीं जा सकते हैं कहीं भी तो आप कम से कम इन कांवड़ियों की सेवा तो कर ही सकते हैं। नाथ नगरी में जलाभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा चरम पर है। रविवार को हजारों की संख्या में यानी कल कांवड़िए बदायूं के कछला घाट से गंगा जल लेने के लिए रवाना हुए और वहीं 6 अगस्त को कछला धाम गए 4,000 कांवड़ियों का जत्था वापस भी लौटा। देर रात बनखंडीनाथ धाम में कांवड़ियों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और वहीं अन्य नाथ मंदिरों में, क्योंकि अपनी जो बड़ी नगरी है वो सात नाथ नगरी कहलाती है, नाथ नगरी कहलाती है, यहाँ पे है सातों नाथ, तो विशेष उत्साह दिखाई दिया जलाभिषेक के लिए और रात 12 बजे के बाद से शिवालयों में लोग जलाभिषेक के लिए पहुंचने लगे और